नमस्कार प्रणाम पहलाग शिवसौली श्रोताओं आप सुनना छन आकाशवाणी एडलेट 103.1 FM भारतीय प्रसारण का क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रम मा उत्तराखंडी कार्यक्रम ये कार्यक्रम ते आप ऑनलाइन भी सुन सकदन www.5bbi.com.au पर मेरी यानी विनोद बिस्की दगड़ी ये कार्यक्रम मा आप सदानी की तरह गढ़वाली कुमाऊनी गीतों के साथ साथ आज मैं अपना स्टूडियो में लाई छो एक विशेष मेहमान ते जो भारत बितिन ऑस्ट्रेलिया आए छन उछन श्रीमती सुशीला रावत जी जो उत्तराखंडी सिनेमा मां पहली महिला फिल्म निर्देशिका छन जौन मंगतू बोलिया से लेकर अर घंगतोल तक कई सुपरहिट फिल्म दिनन और आज की समय मां एक चिर परिचित निर्देशिका रूप मां काम करना छन आज उसी मुलाकात होली पहली शुरुआत करता हूं ये कार्यक्रम की ई वंदना सी।

0: दगड़ी हूँ, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैंने आपने बताई थो कि आज मेरी दगड़ी विशेष मेहमान छन सुशीला रावत जी। सुशीला रावत जी जो एक अभिनेत्री भी रहन, एक थिएटर कलाकार भी रहन और आज एक सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशिका भी छन। तो उनको स्वागत करनु छो मैं हमारा कार्यक्रम में। सुशीला रावत जी सादर प्रणाम, स्वागत छ आपको हमारा ये आकाशवाणी स्टूडियो एडिलेड में।
1: नमस्कार विनोद जी, मैं सुशीला रावत आपको और आकाशवाणी का आपक सभी श्रोताओं को दिल से धन्यवाद कर दूं जो आपन मिता बातचीत करने को सौभाग्य दिया है।

0: तो सुशीला जी, मैं और मेरा श्रोता आपसे जानना चाहला कि आपकी शिक्षा दीक्षा कह हुए और आप ये जो अभिनय का क्षेत्र मंच वो कने पहुंचन।
1: जब मेरे ब्याह है तो मिश्रा हायर सेकेंडरी पास किया, देखो बाद में बी ए दिल्ली यूनिवर्सिटी, एम ए समाज शास्त्र, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ भी किया। अभिनय को शौक तो बचपन में टीन से आई, पर ब्याह के बाद मिता अभिनय करना का एक मौका मिली। स्वर्गीय श्री राजेंद्र धस्वाना और कन्हैया लाल ढंडियाल जी द्वारा लिखित नाटक कंसानुक्रम से मेरी शुरुआत हुई। नाटक निर्देशन करूं चाहे मित्रानंद कुकृति जी, और मेरे सौभाग्य चाहे कि महान हस्तियों तगर में काम करी। मेरे जो पहलू काम चाहे वो लोग बहुत पसंद करी, वन तो बहुत मुश्किल थे वे जमन में लड़कियों बहरा भी ब्याह बाद बार बन जाना तो यह जिम्मेदारी और भी बढ़ जाते और कोई मतलब आज्ञा नहीं ध्यान, पर एक नाटक करने का आज्ञा तो मिल गई थे। वे बाद सोचे चाहे कि शायद निकल लो, पर जमीन नाटक आरी मेरी एक्टिंग यार घर वाल तभी बहुत पसंद आई। तो यून वाली मेरे पति स्वर्गीय श्री धीरज सिंह रावत जी ने कि भाई मैं तो तक कभी नहीं रुक लू, आप नाटक कर अच्छी विद्यार्थी और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारा टैलेंट खत्म नहीं होना ध्यान। तो एक बात तब विनोद जी मैंने पिछना मुड़ी नहीं दिया कि और आज 40 साल हो गई, 40 क्या 45 समय

0: सुशीला जी, मैं आपका जो सम्मान जो आपते मिलियनों की लिस्ट जो देखनु वेमा कई एना अवार्ड छन कि जो आप ही हमते बता सकदन कि आपते क्या विशिष्ट कार्य ते मिलियन किले कि आपकी जो प्रतिभा रहे वेमा आप चाहे वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को अवार्ड छ या फिर बेस्ट डायरेक्टर को ये का बीच में देखिन कई संस्थान आते अवार्ड दिन जयमा उत्तराखंड फिल्म संस्थान दिल्ली छ, उत्तराखंड फिल्म एसोसिएशन देहरादून, यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड का भी, और यूं सम्मान से सम्मानित होने का बाद आपकी कार्यशैली पर क्या प्रभाव पड़ी?
1: विनोद जी, आप जितका भी अवार्ड बताना छन मेरे कामक प्रति मिलिन, अवार्ड से सिर्फ एक प्रेरणा मिल, अरे अवार्ड हमको प्रेरणा स्रोत ही छन हम अपनी यात्रा था अगले बढ़ाने रहो। जब क्या का मेरा कामक पहचान मिल रही तो दुगना जोश से अपनी मंजिल की ओर पहुंचो, क्या वो बेस्ट एक्टर हुआ, बेस्ट राइटर, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड हुआ, ये संपूर्ण उत्तराखंड है। और आज मैं आपके दगर एक बात और साझा करना चाहूँ, यह संपूर्ण उत्तराखंड को एक गर्व एक बात थी कि दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिता मेरी फिल्म गहमतोल को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल।

0: सुशील राव जी, मैं देखना चाह लगी हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया में भी छन और भारत में भी आप हमारा उत्तराखंड से बहुत अच्छा ढंग से जुड़े छन, तो आपका अनुभव सी ये न क्या चीज हुई चाहती कि जैसे कि हम अपना पहाड़ ते देश विदेश से भी जोड़ो और हमारी आने वाली पीढ़ी उत्तराखंड से जुड़ी रहो।
1: विनोद जी अपन ठीक ही सुन, हम लोग पिछला 45 साल से दिल्ली जन महानगर में गौराली नाटक करना था, अपनी बोली अपनी भाषा अपनी संस्कृति तय अगना बनाना था। दिल्ली में वे जमन में जाकर अपनी बोली अपनी भाषा अपनी संस्कृति को संरक्षण कर है। और हम ये काम में सफल भी हुआ, ये कुछ सबसे बड़ा उदाहरण में अब तक समझो। जब मैं थिएटर ज्वाइन कर दिया है तो मैं गढ़वाली के नाम पर मिटाए कुछ नहीं आन जाए, हाँ समझे छाए जब थिएटर कारी तब एक परिणाम आज एक सफल लेखक निर्देशक एक्टर छो जो अपनी बोली भाषा और संस्कृति को समर्पित छो। और आज आप एक समय अपनी बोली माँ आप पर इंटरव्यू दियानो छो, ये से बड़ो एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकूत। बहुत फिल्म कार्यकारी बहुत फिल्म निर्देशन कार्य और बहुत स्क्रिप्ट लिखी, अगर मैं आप बतानी चाहो तो एक तो लंबी लिस्ट हो जाए और उसका टाइम नहीं। तो ये जो मेरी फिल्म थी घंगतोल या जोधा फिल्म बैनर तले बनी थी, जो बैनर तले मीन एक और काम कर जाई कुछ चक्रव्यूह फिल्म ये बैनर तले थे। और ये से पहले देख सकते हो उत्तराखंड दूरदर्शन का जो पहलू सीरियल था भागीरथी प्रयास वो भी यही बैनर तले थे। तो जब ट्यूनिंग हुए जान समर्पण हुए जान तो कार्य अभी करना पड़ रहा रिदन।
0: क्या बात बहुत सुंदर लगी आपसे मुलाकात में बात करी थे। अरे आप जब जब ऑस्ट्रेलिया की धरती पर रहो तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में यही आऊ दी रहो और हमारा श्रोताओं को कुछ न कुछ अपना अनुभव बता दी रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये कार्यक्रम में सम्मिलित होने का वास्ता। पहला प्रणाम।
1: मैं धन्यवाद करना चाहूँ अपर प्रोड्यूसर संजय जोशी और सुधीर धड़ जी जो उत्तराखंडी फिल्म को समर्पित छन और यूं तय अगना बढ़ाना छन। धन्यवाद, बहुत अच्छी लगी आपसे बातचीत करी की।

श्रोताओं अब समय होनो छ आपसे इजाजत लेने को। मैं आशा करता हूँ यो कार्यक्रम आपते पसंद आयो होलू। यो कार्यक्रम एथर भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहलू www.5bbi.com.au पर। आगे दिया मैं विनोद बिस्ते अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होली। तब तई पहला प्रणाम शिवर सोनी।